एक छात्रा डिंपल दीक्षित उर्फ डी ने बगैर परमिशन आगरा फोर्ट में एक रॉक कंसर्ट ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसके कारण बहुत सारी भीड़ उमड़ आई है और एसपीसीटी आगरा ने उन्हें यहाँ से निकालने का आदेश जारी किया है।